0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে হিন্দী বাতৰি আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के सहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
2: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ

0: सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जनसुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate his completion of 25 years of public service as a head of government. This includes his 13 years as Chief Minister of Gujarat and 12 years as Prime Minister of India. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown, Varnagar, in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Varnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. Delhi government will organise 4 major programmes in the national capital today on the occasion of Prime Minister Narendra Modi's birthday. The programmes are centred on service, dedication and public participation. Additionally, to mark the completion of 25 years of Prime Minister Modi's public life, Delhi government will launch a month-long Seva Sankalp Abhiyan. During this period, various projects related to transport, roads, sewerage, water treatment, education, electricity, public amenities and urban beautification will be inaugurated or have their foundation stones laid. Delhi government has approved the construction of a 250-bed super speciality cum trauma block at Guru Tegh Bahadur Hospital in Dilshad Garden of Delhi. This decision was taken at a cabinet meeting chaired by Chief Minister Rekha Gupta in New Delhi. The Chief Minister said that once the new block becomes operational, critical patients will have access to 24/7 emergency and trauma care, specialist treatment, diagnostics, surgery and intensive care at one place. India has rejected the so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, saying that Pakistan has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. Responding to media queries, Ministry of External Affairs MEA spokesperson Randhir Jaiswal said, the ministry has seen reports in this regard and India's position on this matter is clear and consistent. He said

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े 4 प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान

0: खाद्यान्न, परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में जीडी करना लोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज, सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
2: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
3: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
2: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
4: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
2: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्जवल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं।

0: हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी एट 76, संघर्ष से शिखर तक का सफर। दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच

0: आयोजन किया जा रहा है। ये तीन दिवसीय आयोजन है जो 17 तारीख से यानी आज से शुरू होकर 19 सितंबर तक चलेगा। आज इसका उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री जी उपस्थित जनसमूहों को और साथ ही इस आयोजन से जुड़े हुए लोगों को संबोधित भी करेंगे। आकाशवाणी दिल्ली से आप आयोजन का विवरण सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम आपको बताना चाहेंगे कि
1: सेमिकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि यशोभूमि में तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं, जो अपनी मौजूदगी से भारत में सेमिकॉन जो परंपरा है, जो हमारा प्रयास है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती प्रदान करेंगे। 150 से अधिक जाने माने वक्ता अपने अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे। 6 देशों के पवेलियन और 12 राज्यों के पवेलियन भी इस दौरान होंगे। इनके साथ ही स्टार्टअप शोकेस होगा, छात्रों के लिए हैकाथॉन, कर्मचारियों और तकनीकी प्रतिभाओं के विकास से जुड़े पवेलियन होंगे, साथ ही महिला फोरम भी होगा। और इस विशेष कार्यक्रम में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन यानी इन 6 देशों की उपस्थिति है। इनके प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं और 12 राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप और नवाचार प्रदर्शनी भी है, जो लगातार सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। विशाल जनसमूह

0: build technological expertise, and develop a resilient local supply chain. No single company or institution can build a future-proof semiconductor ecosystem alone. India's opportunity also extends beyond chip manufacturing. Under the right conditions, India will become increasingly important globally. ASML is working with industry peers to better understand India's supply landscape and identify local capabilities that can support semiconductor value chain. This includes exploring opportunities to broaden supply chain competences and to strengthen engineering capabilities in support of existing semiconductor suppliers as they continue to mature in quality, efficiency, and scale. We are approaching this journey with commitment and humility, and frankly, we're just getting started. We are learning from the broader ecosystem. Discussions with peer companies, suppliers, and customers are helping us understand what is needed to scale successfully in India and where ASML can contribute the most effectively. Our announced partnership with Tata Electronics is a very important milestone. ASML will support Tata's upcoming 300-millimeter fab in Dholera, and we are highly committed to supporting its semiconductor manufacturing roadmap with our holistic lithography product solutions. ASML is committed to teaming up with India and actively contributing to its long-term semiconductor manufacturing ambitions, as stated in SEMICON 2.0. Together, we can build the capabilities, partnerships, and innovative ecosystem needed to turn India's enormous potential into lasting progress. I look forward to our collaboration, and thank you.
1: ग्लोबल पार्टनरशिप का प्रतिनिधित्व करते हुए ASML से आमंत्रित प्रतिनिधि और वक्ता ने गुजरात में चल रहे अपने प्रोजेक्ट्स की बात की, साथ ही टाटा इंडस्ट्रीज के साथ जो साझेदारी में कार्य किया जा रहा है उसका उल्लेख भी किया। हम आपको बताएं कि इस समय यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति में आज उद्घाटन सत्र चल रहा है। 3 दिन तक ये आयोजन चलेगा और इस वर्ष की थीम है सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इकोसिस्टम, यानी हम किसी एक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं बल्कि पूरा एक इकोसिस्टम, एक व्यवस्था जो है उसे विकसित कर रहे हैं। साथ ही इसमें जो देश हैं, अन्य देश जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी साझेदारी है और इस समय इस आयोजन में विदेशी प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन, यानी 6 देशों के प्रतिनिधि यहां पर हैं और भारत के विभिन्न राज्यों के बूथ, स्टार्टअप मंडप, नवाचार इस दौरान प्रदर्शनी के रूप में विभिन्न लोगों के सामने दिखाए जा रहे हैं कि क्या कार्य भारत में हो रहा है और किस दिशा में हम और आगे बढ़ेंगे।
2: Yes, indeed. And as we mentioned earlier, that Sri Ashwini Vaishnav, the Minister for Electronics and Information Technology.
3: श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। हम सब मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, सेमिकॉन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश के कई कई दशकों तक विकास के लिए जरूरी है। फॉर मेनी डेकेड्स इंडिया वॉन्टेड टू हैव अ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बट ओनली under the visionary leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we could build this foundation of the foundational industry. In the Semicon 1.0, we could make that beginning. We started with a very measured and a very calibrated program, the program which was focused on making sure that the industry can set the base in our country. And the focus was very much on getting the right talent, making sure that the ecosystem builds in our country. That was the beginning. That is the foundation we have been able to lay in the first 12 years of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's leadership of this country. Now we have to build the building over this foundation. I'll talk very briefly

0: absolutely industry-oriented talent development, and we have been able to deliver on that. And in Semicon 2.0, we will take a big task for developing the technician talent, the clean room talent, the factory floor talent, and we will be targeting 100,000, 1 lakh talent to be developed, which will straight away be employed in the factories which are coming up in India, and it will be a global pool of talent which will be available. So that will be a very big goal for us in the Semicon 2.0. This is a long journey. We have taken the first step. We are now taking the second step. We have built the foundation, and this is what is going to be the foundation and the journey which takes us to developed nation, Viksit Bharat. Thank you very much, friends. Bharat Mata Ki. Bharat
1: Mata. That was the Union Minister for Electronics and Information Technology, Information and Broadcasting and Railways, Shri Ashwini Vaishnav, who mentioned about the Honorable Prime Minister's vision of Semicon 2.0, and that is going to be built on 6 pillars, and those pillars are designing machines and materials, more display, more advanced packaging units, cutting-edge industry-required research and development and talent. And Neelam, as we know that industry is also going ahead, racing ahead to Industry 4.0, so this augurs really well for our young talent pool. And the minister mentioned that investments that have been promised by the various leading global semicon industry players, they are going to make India indeed a global powerhouse, and it will have a multiplier effect in having more advanced technologies, as well as it will create huge, huge employment opportunities for the youth of India.
2: जी बिल्कुल. और अब जो चिप है उसे हम ये नहीं कह सकते कि एक छोटा सा उपकरण है जो किसी एक खास क्षेत्र तक सीमित है. ये कारों से लेकर ड्रोन्स तक, विमानों तक, एमआरआई मशीनों तक, उपग्रहों तक, सभी में लगा होता है. और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस समय यहाँ पर एक औपचारिक अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर. और CDIL
1: Semiconductors plant has been inaugurated, and also the Shuchi Semicon, and this is a virtual inauguration by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
2: Ji, aur jo upasthit jan samuh hai is samay Kartal Dhwani se is pal ka swagat karta hua, yahan par chhaviyan dikhai ja rahi hain alag alag in kshetron se judi hui, aur is tarah se Semicon 2026 ka udghatan satra jo hai bahut kuch apne aap mein samete hue hai, aur saath hi हमें ये बताता हुआ कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से अब बुनियादी उद्योग बन गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से लेकर स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र तक लगभग हर बड़ा उद्योग चिप्स पर निर्भर करता है, और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकले उत्पादों पर निर्भर करता है. इस वजह से जितना सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उतना ही उससे जुड़े हुए उद्योग भी उभरते रहेंगे और वो भी सशक्त होते रहेंगे. और हम क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिप से भला हम कैसे दूर रह सकते हैं जो कि हमारे हर उपकरण का हिस्सा अब होने जा रही है. हम सिर्फ मोबाइल की चिप एक छोटी सी जानते हैं, लेकिन अब चिप हर उपकरण में शामिल. और यहां एक तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का.
1: एंड अ मेमेंटो हैज बीन प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव. एंड एज यू राइटली मेंशन नीलम, दैट दिस इज इंडीड अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द India-built chips are really going to play a leading role in the world of semiconductors. And that is what everything is now based on, these small chips, which are part of our mobile, our television, even our transportation ecosystem.
2: Ji, bilkul. Aur make in India, ease of doing business, saath hi nivesh ka hub banane ka jo sankalp hai maninya Pradhan Mantri ji ka desh,

0: को, इसने एक पूरा इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है, कैसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें अब निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही जिन क्षेत्रों में पहले हम सिर्फ आयात करते थे उपकरण, उन क्षेत्रों में अब हम निर्यातक बनकर उभर रहे हैं, अब हम निर्यात भी करते हैं। और ऐसे में सेमीकॉन की एक पूरी व्यवस्था तैयार करने का जो प्रयास है उसमें अब सिर्फ चिप निर्माण नहीं है बल्कि चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीनरी का निर्माण करना, कच्चा माल देश से ही प्राप्त करना और साथ ही कुशल कर्मचारी तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना और जो स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से उनको उभरने का अवसर देना, स्टार्टअप से वो यूनिकॉर्न बने और यूनिकॉर्न से वो ऐसी एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बने, एक ऐसा उद्योग बने जो निर्यात शुरू करे, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं साथ ही। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमें छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, हमें बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उस दिशा में हमें प्रयास भी करना है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड एज द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव मेंशन, एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी।
2: थैंक यू। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितिन प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओस, डेलीगेट्स और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के, भारत के भविष्य ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमीकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमीकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15 दिनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, तो अंदाजा लगता है कि भारत किस दिशा में किस तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी सितंबर में ठीक 10 दिन पहले मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ। इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव

फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशंस में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशंस में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइन से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है। और अभी अभी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं,

वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स, आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है। और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप्स के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है। और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है।

अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका की कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाएं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1 लाख इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया, इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे, जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते 2 वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के और करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें,

0: बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं, वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है, तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है, तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है, और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर और शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was addressing the inaugural session of Semicon India 2026, and the Honorable Prime Minister received a standing ovation from the people and the delegates who are assembled.

0: of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India is also ready to take on the emerging responsibilities. The Prime Minister mentioned that more than 160 gigawatt of solar power has been achieved by India. India is also using nuclear energy and it has been open to private players. India is consistently now working on small modular reactors. India is the mother of democracy, and we celebrated very recently the 75 years of our constitution. The Prime Minister said that weaponization of supply chains should not be allowed, and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी, और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया, और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं, और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है और अगले तीन दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानी, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।

0: আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু খন্তেক পাছতে এক বজাৰ পৰা হিন্দী আৰু 1:05 পৰা ইংৰাজী বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है।

0: और नवाचार निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: 2 PM समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में

0: पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। सड़क रास्ते हो या रेल नेटवर्क, पर्यटन हो या सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में हर क्षेत्र में दिन ब दिन तरक्की और समृद्धि देखने को मिल रही है। इस सिलसिले में हमने सीनियर राजनीतिक विश्लेषक हकीम रोहला गाजी से बात की तो उन्होंने कहा,
3: पिछले 7 सालों से जो नया कश्मीर बना है उस कश्मीर में सुख शांति खुशहाली समृद्धि हर एतबार से हम देखें, खावो पीस हो, टूरिज्म हो, हमारी इकोनॉमी हो, कश्मीर में आए दिन वो हड़तालों का कल्चर वो खत्म हुआ, अब आए दिन हमारे यहाँ फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
2: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: गृहमंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
4: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
0: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री

0: को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
1: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूलकिट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। श्री हरीश ने आतंकवादियों के साथ साथ उन्हें सहायता, वित्त पोषण, सहयोग और शरण देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आग्रह किया।
2: Draining the swamp that provided an
3: इस दलदल को सुखाना बेहद जरूरी है जिसने 9/11 के साजिशकर्ताओं को पनाह दी। उसके बाद के वर्षों में भी लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे अलकायदा से जुड़े संगठनों को भी मदद करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसे पनाह गाहों की निरंतरता को रोकने के लिए एकजुट होना चाहिए ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे और व्यक्ति किसी भी देश या उसके नागरिकों पर ना थोपे जाएं और कोई भी अपने परिवार और प्रियजनों को ना खोए।
0: भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का 1 माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: মিডিয়াম ওয়েভৰ 411.5 মিটাৰ, 729 কিলোহাৰ্টজ, এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজ আৰু নিউজ অন AIR মোবাইল এপত এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া শুনক পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান।

कार्डम निलीजनल रोहां बीरता जुटा मिनिस्टर सरपो नरेंद्र मोदी अमहां की ठेक आर निपाचे तोंदन से पिनी गुजरात अ मिनिस्टर के होय लपेन मिनिस्टर सरपो अर पुकी खे निकान कर फोके प्लेंग पाचे तोंद पन से पिनी पेन सेवा समर्पण चिक्लोय जन आ नारचो पन पो प्रेक्जा मजाय मेक देत पियार लो कपिदु पेन से सेवा संकल्प अभियान साई देंग पन लो यूनियन हेम्ब्रिड हिन नटकेलांग मिनिस्टर अमित शाह पेंटा पिनी गुजरात अलोंग बाय ट्रेली पदुपोनो मिनिस्टर सपो लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी वाराणसी अलोंग से लासो बाय ट्रेली पदुपोनो दिल्ली गवर्नमेंट पेन सेवा समर्पण कतालोन पचेतोंदुन से पिनी प्रेग्जाम जायमे पदुपोनो मिनिस्टर सपो नरेंद्र मोदी अमहां की थेक निंकान टॉक्सिकर फोकी चौक अर्नी प्रेसिडेंट संगपी द्रौपदी मुर्मू वाइस प्रेसिडेंट

0: लक्के आकाश पनि कति महब हो आदुन्थु लामजिराङ देङलाङ पेन कार्बि आङलङ आरलो इङलङारि थिसु कतिकि गांहय पबुथाक बानेश्वर बिपेनके थाना लामजिर आरजिलङिपो तांते आरजिक सेनां बनेश्वर बिपेन की थान लबंग सोलम जेल
1: साइट्रस स्पीसीज मते असोन असोन अके थोर के डॉग अठिसरी थेकुम्बोंग अंगबोंग पेन ओरेंज मते थिसु के डॉग हेलो कमर्शियल अटेंग पेन चुटिकी कथी हुंगनाय पिरथे अलोंग असोन असोन के थोर के डॉग अठिसरी कचुटिकी अंकांग थेपी बहा के थोम पेन बहा खिनी अंकांग के बांसु अठिसु के डॉग सी चिराय देतलो बांसु अठिसु के डॉग यूनाइटेड स्टेट्स ब्राजील सेंट्रल लपेन साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका जापान चाइना इंडिया लपेन मेडिटेरेनियन कंट्रीज हाई हुई अलोंग हेलो चुटिकी कची हुंगनाय इंडिया अडेट अलोंग कप्रेक कप्रेक अठिसु के डॉग अंगबोंग पेन मंडारिन ऑरेंज स्वीट ऑरेंज हाई हुई हेलो चुटिकी कची हुंगनाय लपेन आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र असम मेघालय लपेन कर्नाटका हेलो अंकांग थे ओपेन थिसु के डॉग असाई का चुटिकी पोन अलोंगरी असम अलोंगरी अलोंग की कार्बियांगलोंग नॉर्थ कचर कामरूप डिब्रुगढ़ लापेन तिनसुकिया हाई हुई हेलो कमार्शियल टेंगपेन थेसुके डॉग कातिकी पोन आ डिस्ट्रिक्ट ऑरेंज पुलोतांगटे जसेमेट के मंडारिन ऑरेंज अफानसी के हक साइंटिफिक अमेन के साइट्रस रेटिकुलेटा ब्लेंको लबांगसो मंडारिन ऑरेंज अफान खासी मंडारिन पुटाहेपू पारक अलामपेन के हुमथिरा माते कमला टेंगा पुटाहेपू ऑरेंज मते थेसो के डॉग अलोंग पेन इली विटामिन सी मिनरल्स हाई हुई लॉन्ग पोन अंगपार्टा अकेमेन अथेसो के डॉग पेन जाम जेली स्क्वास आहू पेन मारमालेट लापेन असन असन अकेक बिस्कुट्स अंगनिम कापानेम फ्रूजी अफान पांगुई दुनमी थेसो के डॉग आहू कसे जॉय मते लूस स्किन लापेन आहू कांगनेप मते टाइट स्किन तादो सितामे असाम अलोंग री अलोंग के लूस स्किन ऑरेंज अबांग चोट के लोंग टाइट स्किन ऑरेंज अबांग के नागपुर पू मध्य प्रदेश अलोंग चोट कटिकी पोन पोन असम अलोंग री अलोंग जातनी आहू कसे जॉय अठेसो के डॉग आंसी टिकी चोट लाके स्वीट ऑरेंज लापेन किंग ऑरेंज स्वीट ऑरेंज के लोकल कल्टिवर अठे थेपिक पे सीटामे अकेमेन डॉग पिक चोमे पिक थेसो के डॉग असाई का चुटिकी जी अफान मीडियम कालिटे लाइट लुमी अलोंग ले मसी लापेन लोंग ले अपीएस न्यूट्रल मते फोरा तक बर्फो पेन थेरोक्सी रतक बर्फो आन केदो केनांग सर आंग पार्टा काचुटिकी जी अलोंग ले अलोंग लांग चिंगटन ते पिन चिची फाक नांगजी लासिकाय केता इंगलोंग अलोंग क्लाम कालिते लोंखरांग आजुसी बांसो असाई काचुटिकी नांगजी असाम अलोंग री अलोंग कार्बियांग लोंग आहावार के थेसो के डॉग असाई काचुटिकी अफान मेपिगलो जसेमेट के हमरेन सब डिविजन अंकांग के थेसो के डॉग अलोंग रिलो बांसो असाई इली इंगलोंग अलेंग जीर मितार फारोने
2: नमस्कार आकाशवाणी गुवाहाटीर एटियार बातरी होइते मय जुली शर्मा बरुवा মুখ্যমন্ত্রী আত্মনির্ভৰ অসম অভিযানৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ অধীনত আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত আৰ্থিক সাহায্য বিতৰণ কৰে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিন তথা গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্রী আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা মুঠ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আজিৰে পৰা সেৱা সমৰ্পণ মাহৰ আয়োজন কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আজি 76 সংখ্যক জন্মদিন উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে ধৰি বিভিন্নজনে নেতাগৰাকীলৈ শুভেচ্ছা জনাইছে ৰাজ্যত মাদক দ্ৰব্য মুক্ত আৰু শক্তিশালী সমাজ গঢ়াৰ সংকল্পৰে আজিৰ পৰা 2 অক্টোবৰলৈ বিশেষ জনজাগৰণ পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিবলৈ লোৱা হৈছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি উপনির্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰসমূহ আজি পৰীক্ষা কৰা হৈছে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে 25 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে 35খন মনোনয়ন দাখিল কৰিছে জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ

278 कौटि रां अनसुंथाय राननानै होनाय जायो। गिबि मन्त्री हेमन्त बिश्व शर्माया मैया गोदान दिल्लीनि भारत मण्डपआव फैगौ 29 नभेम्बराव खुंनो गोनां गागि देंखोगिरि ड॰ भुपेन हाजरिकानि 100 बोसोरारि जोनोम साननि जोबथा हाबाफारिनि खौरां लाहैयो। गिबि मन्त्रिया बुङो दि बे हाबाफारियाव देंखोगिरिनि गुबुन गुबुन सोरजिलु आरो अराय सोमखोर मेथाइफोरनि हारिमुआरि दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जागोन। देंखोगिरिनि जिउ आरो बिहोमाखौ लानानै दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव गाहाय मन्त्री नरेन्द्र मदियाबो बाहागो लागोन होननानै गिबि मन्त्री मुश्री शर्माया फोरमायो। नगाव लोकसभा समष्टिनि गेजेर खलबनि बिसायख'थिनि थाखाय 25 बिजाथिया नमिनेसन बिलाइ गथायबाय। नमिनेसन बिलाइफोरखौ दिनै आन्जाद नायनाय जागोन। समफोर नमिनेसन बिलाइ दिखांनानै लाफिनायनि जोबथा खालार। नमिनेसन बिलाइ गथायनायफोरनि गेजेराव दं फारियो बिजेपिनि देबाशिष शर्मा, कंग्रेसनि शिवानी बरा, AIUDFनि बदरुद्दीन आजमल आरो तृणमूल कंग्रेसनि आब्दुल सालाम। नमिनेसन बिलाइ गथायनायनि मैया जोबथा खालाराव बिजेपिनि बिजाथि देबाशिष शर्माया दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै नगाव जिल्ला आयुक्त' एबा रिटार्निं मावख'ग्रानि सेराव नमिनेसन बिलाइखौ गथायो। बिजेपिनि बिजाथि देबाशिष शर्माजों नमिनेसन बिलाइ गथायनाय समाव बिजेपि हादरसानि आफादगिरि दिलीप शइकिया, मन्त्री पियुष हाजरिका लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। मख'जाथाव दि फैगौ 6 अक्ट'बराव नगाव लोकसभा गेजेर खलबनि बिसायख'थि खुंनाय जागोन आरो फैगौ 9 अक्ट'बराव भट साननाया जागोन। हादरसानि सरकारि आरो सरकारि गनायथि मोननाय गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरा मासुल रेहाय मावबिथांखि निजुद मैना आरो निजुद बाबु मावबिथांखिखौ लाफानानै गुबुन गुबुन मावबिथांखिनि सुबिदाफोरखौ मोनोब्ला सोलोंथाय फसंथानाव खमैबो 70% नुजाथिनाय जाथारनो नांगोन। सोलोंथाय मन्त्री रनुज बिगुआ बे बाथ्राखौ मैया फोरमायो। बिथाङा बुङोदि जायफोर फरायसाया सोलोंसालियाव नुजाथिनाय गोनांथिनि हारखौ मोननो हायाब्ला बिसोरनि मुंखौ गासै रोखोमनि मावबिथांखिनि मुं फारिलाइनिफ्राय दानख'ना होनाय जागोन। नाथाय मिथिंगायारि अलखद, सावस्रियारि जेंना एबा न'खरनि सोरबा थैनाय बायदि जर'खा जाहोननि थाखाय गोरायुङा फरायसालि थाखोआव नुजाथिनायनि रेहाय होनाय मिथिसार होनो नांगोन। हादरसानि मोन 33 जिल्लायाव सुबुं सानखोनि गिबि खलबनि खामानिया आबुं जाबाय। दैबानाया खहा जानाय चराइदेव आरो शिवसागर जिल्लायाव गाबोननिफ्राय सुबुं सानखोनि गिबि खलबनि खामानिया जागायगोन। बे मोननै जिल्लायाव दानसेनि गेजेराव बे खामानिखौ फोजोबनो नाजानाय जादों। गिबि खलबनि साननायाव न'खर न'खर थांनानै न'खरनि फारिलाइ आरो न'खर साननाय खामानिखौ आबुं खालामनो हायो। आसामा खुंगा 65 सुब्रत काप हायुं गेजेरारि स्कुल फुटबल बादायनायनि 17 बोसोर बैसो सिंनि खलबा देरहागासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोंनि रादाबा एसेनोसै।

खुलुमबाय बे आगाजबानी गुवाहाटी नोंथांमोना आयदाखौ खोनानो मोन्दों महाबाहु दालायनिफ्राय गिबियावनो दुलाराय खोनासंग्रिफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ बावहोनानै दिनैनि बराफोरखौ बेखेवनाय जाबाय आफादखौ फोसावनाय जादों आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालायनि मिडिया मैकनि 401.5 मिटाराव आरो FMB नि 101.6 मेगाहार्सआव बे फोसावनायखौ नोंथांमोना आकाशवाणी क'क्राझारनि 102 मेगाहार्स आरो आकाशवाणी धुबुरीनि 103.3 मेगाहार्सआव रिले खालामनानै फोसावनायखौ खोनानगासिनो दं लोगोसे निउज अन AIR मबाइल एप आरो AIR रेडिय' मबाइल एपनि जोहैबो नोंथांमोना बे फोसावनायखौ खोनानगासिनो दं दिनै स्टुडिय' दं आं सन्जीव बर'आ आरो आंजों लोगोसे स्टुडिय' दंफायो सानसुमा खुंगुर बर'आ दान्दिसे उनाव नोंथांमोना जोंनि उननि हाबाफारिखौ खोनानो मोनगोन बे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु दालाय दायो फोसावलादों साख्रिनि रादाब स्टाफ सेलेक्शन कमिशना गासै मोन 2536 लवार डिभिसन क्लार्क जुनियर सेक्रेटारी

एसिस्टेंट और डाटा एंट्री ऑपरेटर मासेव थिसननो थाखाय बिजाथी सायखनायनि थांखिजों कम्बाइन हायर सेकेंडारी लेवल एग्जामिनेशन 2026 बे आनजादखौ खुंनो थि खालामनाय जादों। बिजाथिया जौसिन गेजेरारि थाखोनि जोबथा आनजादाव उथ्रिनाय जानांगोन। बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 27 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइ गथायनायनि थाखाय वेबसाइटआ जादों ssc.nic.in। आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 7 अक्ट'बर 2026 इं। आसाम सरकारनि जुनात फिसिग्रा आरो जुनात फाहामथाय बिफानाव लांदांजानाय गासै मोन 200 भेटेनारि फिल्ड एसिस्टेन्ट मासिनि थाखाय आर'जलाइ नायगिरनाय जादों। दानबान्थाया दानफायाव 14,000 रांनिफ्राय 70,000 रांसिम, लोगोसे 6,200 रां ग्रेड पे आरो गुबुन गुबुन बनासबो थाफागोन। बिजाथिया बाय'ल'जि आयदाखौ लाफानानै बिगियान आरिमुआव जौसिन गेजेरारिनि जोबथा आनजादाव उथ्रिनाय जानांगोन। बिजाथिनि बैसोआ 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइ गथायनायनि थाखाय वेबसाइटआ जादों animalhusbandry.assam.gov.in। आर'जलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा फैगौ 23 सेप्टेम्बर 2026 मायथाइ। मिरुनि सुबुं सिबिथाय आय'गा कम्बाइन जिअ साइन्टिस्ट एग्जामिनेशन 2027 खुंनो लाहार फाहार खालामदों। बे आनजादनि जोहै जिअ'लजिस्ट, जिअ'फिजिस्ट, केमिस्ट बायदि माखासे थाखोनि गासै मोन 127 मासिनि थाखाय बिनायसा बिसायख'नाय जागोन। बिनायसानि बैसोआ 21 बोसोरनिफ्राय 32 बोसोरनि गेजेराव जानो नांगोन। आबुं खारिथि आरो आर'जलाइ गथायनायनि वेबसाइटआ जादों upsc.gov.in। आर'ज बिलाइ गथायनायनि जोबथा खालारा 22 सेप्टेम्बर। बेजों लोगोसे साख्रिनि रादाबाबो एसेनोसै। बे आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहुदालाय दायो फसंलादों आबादनि जोथोनाय दा। आगोलावनो फोसाव जाखांनाय जायख्लं बर'जों लानाय मोगा मोगि, बे मोगा मोगिखौ लादोंमोन नगेन दैमारिया। जायख्लं बर'आ सासे पटल आबाद मावनानै जाफुंसार जादोंमोन। फैदोब्दिब्ला बेनि बागै खोनासंदिनि।

0: बे आकाशवाणी गुवाहाटी मुआबाहू जो दिन स्टूडियो हंग्रेनानै लाबोदों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गोरेश्वर हालामनि बालाबारि गामिनि सासे गोख्रों राफोद आरो जाफुंसार पटल आबाद मावग्रा सासे आबादारि जों गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि आफासिम बरायग्रोनाय जाबाय
1: आंनिफ्रायबो नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ बावगारनाय जाबाय
0: गोजोन्थों दायो नैबे समाव नोंथाङा गावनि सिनायथिखौ आरो थंखौ नोंथांनि खुगाजोंनो बुङोब्ला जोंनि खोनासंगिरि बिथांमोना थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन
1: आंनि मुङा श्री जायखं बर' गामि बालाबारि पुलिस थाना गोरेश्वर पस्ट अफिस बागदबा डिस्ट्रिक्टआ जाबाय तामुलपुर
0: गोजोननाय थाबाय नोंथाङा सासे नोंथांमोननि ओनसोलाव राफोद आबादारि महरै मुं दङ गिबियावनो नोंथाङा बै पटल आबादखौ मावनो थाखाय सोरनिबा फ्राय थुलुंगा मोन्दोंमोन ना नोंथाङा गावनो गोसो जानानै बे पटल आबादखौ मावनो लाजेनदोंमोन
1: गिबियाव आङो खाथि खाला गामिफोराव पटल आबाद मावनाय दङमोन गोबां सुबुङानो पटल आबाद मावनानै डेभलप जानायखौ नुदों बेवहाय आंबो गोसो गुदुंमोन नालाय आबादखौ नुनानै मावनो पटल आबादखौ बिदिनो एसे रोंनायफोरनियाव सोंबाय बिधानफोरखौ मा रकम गायनांगौ हाफोरखौ मा रकम खालामनांगौ बायदिसिना मोजां मोजां बिथिंखौ बिथांमोनाबो एसे फोरोंबाय फोरोंनानै बिदिनो आंबो दा
0: बे पटल जा माने आबाद मावनाय जायो बे पटलनि जा जाथो मा मा जाथो दङ एबा बेनिनो बबे मोनसे जाथोखौ नोंथाङा दायो मावदों
1: आङो दायो पटलाथ' गोबां जात दङ हानिबो जात सांआव गायग्रा जात
0: औ
1: दायो आं सांनि जात मावदों जातनि मुङा जाबाय राजेन्द्र बन पटलनि मुङा जाबाय
0: दा नोंथाङा गिबियावनो फोरमायदो बे आबादखौ मावनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो माबायदि हाखौ सायख'नानै लानांगौ जायो आरो बेनि थाखाय सिगांग्रो मा मा थियारि जाग्रो गोनां जायो
1: गिबियावनो जोङो हाखौ जुन जुलाइ माहनिफ्राय साफा सुफा खालामनानै हालेवना लानांगौ लानानै एसे हाखौ फेसावनांगौ फेसावना हासार थासार होनानै लायो जों गोबोरखि हासार इउरिया सुपार बायदिसिना मिक्स खालामनानै फोसावना लायो हाखौ बेनि उनाव

0: आखो नायनानै जों मोजां माबानानै आगस्ट बा सेप्टेम्बर
1: औ
0: बे माहायाव एसे गुदुं जायो नालाय बोथोरा
1: औ औ
0: गुदुं दिनाव गायोब्ला थाब बिफाङा रज'नो हायो बेनिखायनो बे समावनो जों बे दुइ माहा मथामथे आगस्ट जुन जुलाइ आगस्ट सेप्टेम्बर आगस्ट बा सेप्टेम्बर बे माह मोननैयाव गायनाय जायो आरो
1: गायनाय जायो एबा जावनाय जायो
0: बेखौ
1: बेदरनिफ्राय गायो ना बेगरनिफ्राय गायो ना माबायदि बोरै दालायनिफ्राय गायो खोनासंग्रा बिथांमोना बेखौ मिथिना मोनोब्ला एसे मोजां जायो
0: जोङो दायो गायो बिफांखौ दा गोदाव सिगां आगोलाव मावखानाय थायो नालाय
1: औ
0: बिनि बिफांखौ दाननानै
1: औ
0: एसे गोलाव गोलाव गान्थि थानाय
1: औ
0: माबा बिफांखौ कमसे कम दसता पन्द्रतासो गान्थि थानांगोन आरो बेखौ गायनानै रिं खालामनानै एसे हाखो कमसे कम पन्द्र बा षोल्ल सेन्टिमिटारसो सिङाव गाथा खालामबाय माबा एसे
1: गुदुं
0: खालामनानै गुदुं खालामनानै फबना दोननांगौ
1: औ
0: फबनानै एसे खर' मोनसे दिहुनबाबो जायो खर' मोननै दिहुनबाबो जायो
1: बिदि आरो बेनिफ्राय बेसेबांसो फुलि अरो एबा दंफां ओंखारो
0: बेयाव गिबियाव जाय माबानिफ्राय गान्थि मोनफ्राम थाङो नालाय इथिंबो इथिंबो मोननै खर' दिहुनबा खर' मोननैथिं मथामथि थनै थरथाम थब्रै फासाव बिदि ओंखारो आरो
1: औ
0: ओंखारनानै बेखौ जों बै माबालागै डिसेम्बर नभेम्बर बा डिसेम्बरहालागै जों बेखौ लाखिनांगोन लाखिनायनिफ्राय जानुवारि सम मोनोब्ला बेखौ जों गोदान बिफां बनायगोन आरो हास'नानै हास'नानै गोदान बिफां बेनिफ्राय आरो गोबां गोदान बिफां ओंखारगोन गोदान बिफाङाव मथामथि ओंखारो बहुत दस बिस दालबो ओंखारनानै बेखौ जों हिसाब खालामनानै लाखिनाय जायो फांसे बिफाङाव मथामथि आठ दाल दस दाल बिदि लाखियो आरो
1: माने बिनि गायनायनि बा जावैनायनि जा फारागथि गोजान जाबाय जान्थाय बेसेबां बेसेबां गोजानाव बेखौ गायनाय जायो डिस्टेन्स
0: दायो आं गायनाया डिस्टेन्सा जाबाय
1: दुइ
0: मिटार गोजान गायो आरो बांद्राय एसे खाथि जायोबा थाब मानलानाय आबाद नालाय ओरै थायनायाव थब थायखांनानै मानलाजोबो आरो एसे खस्थ' जायो आरो माबानायाव
1: बिदियाव नोंथां बे जा गायजेननाय सम एबा जावैनाय सम बे समावहाय नोंथाङा बै फुलिनि देरनायनि थाखाय बा दंफांनि बोलोनि थाखाय मा मा हासार मा मा मुलै माबाफोर बेबायदि राहा लानांगौ जायो नामा
0: गिबि गायनायाव एसे जों गोबोरखिखौ फेसेवनानै लायो आरो लानानै बे खल्था बनायनायाव होग्रोना लायो बेलेग आं दा निजाय मावनानै मोननाय मथे आरो गुबुना मा रखम मावदोंमोन बेखौ नुवाखैमोन ओमफ्राय आं दा मावना मोननाय बायदिब्ला गोबोरखिखौ एसे माबानानै सुपार टुपार होनानै फबनानै दोननानै साननैसिम उनाव बुरखांफैनानै बेयाव गायना होयो आरो बिफां
1: बेसेबांसो बिफांनि सुपार गोबोरखि जेनेबा
0: खल्था मोनसेयाव मथामथि मुखसे मुखसे मुख दं नालाय एसे बेफोरदो मिलायना होयो आरो बांद्रायोबा सेवलाङो नालाय बिफाङा
1: नांगौ जखानिखौ
0: होनाय जायो आरो
1: बे जावैनाय समनिफ्राय बेसेबां समनि उनाव बियो बिबार लायो आरो फिथाइ थायनो हमो
0: बियो जोङो बिफांखौ गायो नालाय आगस्ट बा सेप्टेम्बराव
1: औ
0: आगस्ट सेप्टेम्बरनिफ्राय जानुवारि फेब्रुवारि फेब्रुवारिनिफ्राय बिबारा एसे फायग्रोगोन फिथाइनि महर फायगोन आरो थायनाय महर फायो फायनानै ओमफ्राय फेब्रुवारि मार्च गिबि फाननो मोनो
1: आठ मासनिफ्राय फाननो मोननाय जायो दा बै समावहाय गायजेननायनिफ्राय जेनेबा बिबार बारनाय बा थायनाय समसिमहाय बै बिफांफोरनि थाखाय नोंथांमोना मा मा राहा लायो
0: गोदो जोङो हायाव गायोमोन दायो मानि थाखाय हायाव गायलिया आं बिनि थाखाय एसे फोरमायनो हानोसै बैसां सायाव गायोब्ला जोङो आबादारिफोरा एसे खामानि मावनो मोजां जायो मानो होनब्ला हाग्रा जायो नालाय बागान फट' बागान सिंफोराव
1: हायावब्ला औ
0: एसे थाब थाब फबाय थानो गोनां जायो हाग्राया बोलो जायो नालाय आबादफोरनि थाखाय बेनिखायनो जोङो दायो सोलाय पद्धतिफोरखौ सोलायलांबाय सोलायना बैसां सायाव मावनाय जाबाय आरो
1: बे बैसांखौ माबायदि लुयो थांना औवानि
0: जोङो दायो औवाखौ औवानि बनायो बिघा हायाव नांगौ औवा मथामथि दुइस' तिनस' दालसो औवा नांगौ जायो ओरैनो दायो आं दुइ बिघा हा बैसां पथलखौ मावनाय जादों आरो
1: औवाजों लोगोसे जें ना मा बोरै बोरै माबायदि बै बैसांखौ माबायदि माने रोखोमजों एबा राहाजों नोंथांमोना लुयो
0: दायो जोङो औवाखौ गिबियाव खुन्थाखौ बनायबाय नालाय बेनिफ्राय माल्ला औवानो माल्ला होयो माल्ला होनानै बाजाराव प्लास्टिक दिरुं रसि मोनो बायदिसिना रसि मोनो मोजां मोजां बेदि सांखौ बनायनाय जायो बैसांखौ
1: दा बेसायाव
0: बेसायाव मानलायना थायगोन आरो बैसां होयोब्ला जोङो पटल आबादखौ मुलि होनो मोजां जायो फिथाइफोरखौ खानो मोजां जायो बिलाइफोरा अभार गोबां जायोबा बिलाइफोरखौ खानानै होनो गोनां जायो फाथलायो मोननाया फिथाइ थायनायाव मोजां जायो बिफांफोराबो सेहेराया मोजां जायो
1: बांद्राय बिलाइ थायोब्ला बे दंफाङाव माबाफोर असुबिदा जायो नामा
0: जायो मानो होनब्ला एम्फौफोरा आक्रमण खालामनो चान्स मोनो बिलाइ सिंफोराव थानानै
1: नोंथाङा दा हारसिंनो नै बिघा हायाव पटल मावगासिनो दङ बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदो गायजेननायनिफ्राय फिथाइ थायनाय एबा थायबाय थानाय फानबाय थानाय समसिम बै समावहाय दंफांनि रैखाथिनि थाखाय मा मा जेनेबा एम्फौफोरा हमोब्ला मा मा मुलि होनाय जायो
0: एम्फौआथ' गोबां बिदिनि एम्फौ दङ
1: जेरैबायदि
0: जेरैबायदि

0: दैदेनलांनो हायो होननानै नोंथाङा फोरमायनो नामा?
1: सानो आं गिबियावनो जिउ फोरमायनो हायो जाय बिथांमोना ओरैनो लेखा फरा रोंनानै ओरैनो बेखार जिरायबायलाना दं,
0: औ,
1: जायफोरा मोजां मोजां बुरि बाख्रा हा दं बिथांमोना जाहाथे गुबुन आबादखौ मावाबासिनो गुबुन जायगायाव थाङाबासिनो बे पटल आबाद बैसां पटल आबादखौ मावनानै जिउ मोनसेखौ दैदेनलांनो हागोन,
0: लोगोसे
1: गावनो मोजां न'खर खुंलांनो हागोन। लोगोसेयैनो आरो आइजो आरो हिन्जावफोराबो आंनि बायदिब्ला जाबायदि नुहरदों आबादखौ मावनो हायाबाबो ना फिसिनाय अमा फिसिनाय बोरमा दाउ हांसो फिसिनानै गोबां थाखा फैसा आरजिनो हायो ओरैनो थायाबासे आरो थाखा फैसानि किसुमानफोरा आंखाल जायो नालाय सहाय खुजुग होग्राबोथ' दङ गामिफोराव सेल्फ हेल्प ग्रुप आत्मा सहाय ग्रुप बिसोरनिफ्राय कम हाराव लानानै बेफोर आबादखौ मावनो हायो के सि सि लन बायदिसिना लन होयो नालाय खम रेटआव बेफोरखौ लानानै मावनो हायो आरो।
0: दा नोंथाङा बेखौनो खावलायदों नङा होमबा रावबो जनानै थानाङा
1: जना थानाङा लाइफ
0: साख्रि बाख्रिखौथ' नागिरनोबो नांगौ
1: नागिरनांगौ बिदिनो आबादथिंबो हाबना थानांगौ मावलांबाय थानांगौ न'खराबो मोजां जालांगौ।
0: जोबोद जोबोद गोजोन थाबाय जोबनायाव नोंथांनिसिम जोंनि आकाशवाणी गुवाहाटी मुवाबाहु दालायनि बर' आफादनिफ्राय खेबसेबाव नोंथांनिसिम रोजा रोजा खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरफिननानै जोंनि दिनैनि मोगा मोगि आयदाखौबो एसेयावनो फोरमायना जाबाय
1: गोजोन्थों।
2: एसे सम थांना दिनैनि मोगा मोगि लानाय आयदायाव पटल आबादारि जायख्लं बर'जों लानाय दान्दिसे मोगा मोगि होनानै मोगा मोगि होलादोंमोन नगेन दैमारिया आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु मेथाइ आयदायाव खोनासंदो जुनु बसुमतारिनि गाराङाव लासित बसुमतारि सुजुनाय मेथाइखौ।

एसे सम थमना महेंद्र बर'नि गाराङाव दोंसे गोदान मेथाइ खोनानबाय बेजों लोगोसे मेथाइनि आयदायाबो एसेनोसै आकाशवाणी गुवाहाटी महाबाहु समजाना फैनायलाय दुलाराय खोनासंग्राफोरनिसिम जोंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ फिन बहनानै दिनै जोंनि आफादखौ सोनो फुजुनाय जाबाय गोजोन्थों।

शरीर को उन्होंने दक्ष की पुत्री के रूप में पाया है, वो अब उनके व्यर्थ है। यह कहकर उन्होंने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध और शोक सीमा से बाहर हो गया। उन्होंने अपने जटा से वीरभद्र और भद्रकाली का उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का स्थिर कर दिया। इसके बाद भगवान शिव माता सती के निर्जीव शरीर को कांधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके तांडव से तीनों लोक में भय और विनाश फैलने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि असम के नीलाचल पर्वत पर माता सती का यूनिक भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान सबसे महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में एक माना जाता है और यहाँ माँ कामाख्या की पूजा की जाती है। कामाख्या मंदिर की एक और प्रसिद्ध कथा कामदेव से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव सती के वियोग में गहन तपस्या में लीन थे, तब देवताओं ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने अपने पुष्पों बाण चलाए, लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए और अपनी तीसरी आँख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव ने इसी नीलाचल पर्वत पर देवी की कठोर आराधना की। देवी की कृपा से उन्हें पुनः अपना स्वरूप प्राप्त हुआ। माना जाता है कि इसी कारण इस स्थान का नाम कामाख्या पड़ा। आइए अब जानते हैं नरकासुर की कथा। प्राचीन कथाओं के अनुसार असम के शक्तिशाली राजा नरकासुर देवी कामाख्या से विवाह करना चाहता था। देवी ने शर्त रखी कि यदि वो एक ही रात में मंदिर, सीरिया और मार्ग बना देगा तो विवाह संभव होगा। नरकासुर ने लगभग सारा कार्य पूरा कर लिया। देवी ने अपनी माया से एक मुर्गे को बनाया और भोर होने से पहले ही बांग देने के लिए प्रेरित किया। नरकासुर को लगा कि सुबह हो गई और वो शर्त पूरी नहीं कर पाया। इस प्रकार देवी ने उसे विवाह नहीं किया। आप जानते हैं मंदिर का इतिहास के बारे में। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार कामाख्या मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ था। माना जाता है कि 8वीं से 9वीं शताब्दी में यह स्थान तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र बन चुका था। 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारी काला पहाड़ ने मंदिर को क्षति पहुंचाई। बाद में कुछ वंश के राजा नरनारायण और उनके भाई चिलारा ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वर्तमान मंदिर का अधिकांश भाग उसी काल का माना जाता है। इस मंदिर की विशेषता क्या है? कामाख्या मंदिर में देवी की कोई मूर्ति नहीं है। गर्भगृह में प्राकृतिक शिला है जो सदैव जल से नम रहती है। इसी शिला को देवी का स्वरूप माना जाता है। यह मंदिर तांत्रिक साधना का विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ देश विदेश से साधक और श्रद्धालु आते हैं। आइए अब जानते हैं अम्बुबुची मेला के बारे में। कामाख्या मंदिर का सबसे प्रसिद्ध उत्सव अम्बुबुची मेला है। ये मेला हर साल जून महीने में होता है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार देवी रजस्वला यानी मासिक धर्म होती है। इन दौरान मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना नहीं होती। 4थे दिन मंदिर के कपाट पुनः खुले जाते हैं और विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भारत के विभिन्न राज्यों तथा विदेशों से लाखों श्रद्धालु, साधु संत, तांत्रिक और पर्यटक आते हैं। विशेष रूप से तांत्रिक साधना करने वाले साधकों के लिए ये समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अघोरी नागा

0: साधु और तांत्रिक इस अवसर पर अपनी साधनाएं करने आते हैं। मंदिर खोलने के बाद श्रद्धालुओं को रक्त वस्त्र या अंग वस्त्र प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मान्यता है कि ये वस्त्र माता की शक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। अम्बुबची मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि ये प्रकृति और नारी शक्ति के सम्मान का भी प्रतीक है। यह संदेश देता है कि सृष्टि की रचना और जीवन का आधार स्त्री शक्ति है। इस प्रकार अम्बुबची मेला कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध परंपराओं में से एक है, जो हर वर्ष लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। धार्मिक महोत्सव क्या है? कामाख्या मंदिर को शक्ति उपासना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना और मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। विवाह, संतान, सुख समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति के लिए लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। कामाख्या मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि शक्ति, आस्था, तंत्र साधना और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। शक्ति का मतलब देवी माँ कामाख्या की दिव्य शक्ति का प्रतीक, आस्था का मतलब भक्त की श्रद्धा और विश्वास, तंत्र साधना का मतलब तांत्रिक उपासना और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण केंद्र, भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम। यहाँ धर्म, परंपरा, इतिहास और संस्कृति एक साथ दिखाई देते हैं। अर्थात कामाख्या मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि ये देवी शक्ति, भक्ति, तांत्रिक परंपरा और भारतीय संस्कृति का विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। माता सती की कथा, नरकासुर की कहानी, कामदेव की तपस्या और अम्बुबची मेले की परंपरा इस मंदिर को भारत के सबसे विशिष्ट और पूजनीय शक्तिपीठों में स्थान दिलाती है। आज भी लाखों श्रद्धालु माता कामाख्या के दर्शन के लिए गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर पहुंचते हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर की वास्तुकला, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और इससे जुड़ी अनेक कथाएं इसे एक अनोखा धार्मिक स्थल बनाती है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु माँ के दर्शन कर सुख और शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह विशेष प्रस्तुतिकरण यही समाप्त होता है। माँ कामाख्या की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माँ कामाख्या।
1: হিন্দী কথিকাৰ অনুষ্ঠানত শ্ৰোতাসকল ইমান পাৰে শিল্পী পলৰ কথিকা কামাখ্যা মন্দিৰ কি পৌৰাণিক কথা শুনিলে।
2: আকাশবাণীত বিজ্ঞাপন দিয়ক, অগণিত শ্ৰোতাৰ কাষ চাপক।
3: আৱৰ ভইচ গেটছ ইউ হাৰ্ড এভৰিৱেৰ।
2: বিজ্ঞাপন জনসাধাৰণক সজাগ কৰিবলৈ আৰু চৰকাৰী আঁচনিৰ বিষয়ে অৱগত কৰাবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰটি হৈছে
3: 6900453528।
2: আকাশবাণী গুৱাহাটী, সর্বক্ষণ সর্বত্র আপোনাৰ হৈতে।
4: বিদ্যার্থীৰ অনুষ্ঠান প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ ভিত্তিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সমৃদ্ধ কৰা একমাত্ৰ অনুষ্ঠান। প্ৰচাৰৰ সময় প্ৰতি সোম, বুধ আৰু শুক্ৰবাৰে বিয়লি 5:45।
2: প্ৰতিখন ঘৰৰে বাণী আকাশবাণী, সকলোৰে হৃদয়ৰ বাণী আকাশবাণী। আমি আগবাঢ়িছো আপোনালোকৰ সৈতে অন্তৰংগ সম্পৰ্ক গঢ়িবলৈ। মাত্ৰ এটা ক্লিকতে আমাৰ কেন্দ্ৰবোৰৰ অনুষ্ঠান লাইভ, মন কী বাত, সংগীত, নাটক, খেল আৰু প্ৰতিটো পলৰ নিৰ্ভৰযোগ্য বাতৰিৰ সৈতে আমাৰ ৱেবছাইট আকাশবাণী .gov.in-ত নতুন ভাৰত ন ৰূপত।

0: গায়ত্ৰী হাজৰিকাৰ কণ্ঠত মিঠা আৱেশেৰে শ্ৰব্য সফুৰাৰ এই গীতটিৰে সামৰিছোঁ আধুনিক গীতৰ অনুষ্ঠানটি। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। ক্ষণিক পাছতে সমাচাৰ সন্ধিয়া দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष

0: पूरे होने पर देश भर में एक महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश $8 अरब से बढ़कर $13.5 अरब कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
3: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक्ड बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में $5 अरब के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय UPI के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में UPI लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच UPI आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और

0: उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोड मैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार

0: प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়ামেভৰ 411.5 মিটাৰ, 729 কিলোহাৰ্টজ আৰু এফ এম বেণ্ডৰ 101.6 মেগাহাৰ্টজত। আমাৰ অনুষ্ঠান নিউজ অন AIR মোবাইল এপতো শুনি আছে। চিত্ৰগীত, চিত্ৰগীতৰ আৰম্ভণিতে শুনো আহক অহিৰ ভৈৰৱ ছবিখনৰ এটি গীত। গীতটি গাইছে সমৰ হাজৰিকা আৰু শান্তা হুজুৰীয়াই।